0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारी आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर प्रकाश डाला। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla costituzione conciliare sacrosanctum concilium.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। अपने बुधवारीय धर्म शिक्षा में जिस भांति हम द्वितीय वैटिकन महासभा के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन कर रहे हैं, हम पवित्र धर्म विधि के मूल बातों जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर चिंतन करेंगे। संत पापा ने कहा कि वैटिकन द्वितीय महासभा धर्म विधि के मूल्यवान तथ्यों पर कार्य करते हुए हमें इस बात की सच्चाई को पुनः खोज करने में मदद करती है जो प्राचीन कलिस्य की चेतना और धर्माचार्यों की शिक्षा में पहले से व्याप्त था। ख्रिस्तीय धर्म विधि का अनुष्ठान संस्कारीय रहस्यों का बाह्य आवरण, समारोहों का मनमाना संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि कलिस्य का मनन चिंतन है जिसके माध्यम दिव्य उपहार हमारे लिए पहुँचते हैं। इस कारण विशेष रूप से धर्म सभा हमें मिस्टेरियम फीदेई, विश्वास के रहस्य को समझने का आह्वान करती है जो हमारे लिए धर्म विधि के धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में पूरी होती है। संत पापा ने कहा, धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए धर्म विधि को आकार प्रदान करती है जिसके द्वारा वे हमारे जीवन में आध्यात्मिक संवेदना उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए यीशु ख्रिस्त के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का रसास्वादन करने में मदद करते हैं। स्वाभाविक रूप में यह हमारे लिए तब होता है यदि हम धर्म विधि के संबंध में अपरिचित या मूक दर्शक बने नहीं रहते, लेकिन उनमें पूरी तरह से शरीर, मन और हृदय से अपने को शामिल करते हैं जैसे कि हम उसे ईश्वर की आज्ञा में पाते हैं। इस भांति पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा हम ईश्वर के वचनों को सुनने, कृतज्ञता के भाव और आराधना में, भ्रातृत्व में आदान प्रदान और कलिस्य की एकता में बने रहने हेतु अपने को तैयार करते हैं। हम इस बात को पाते हैं कि हम विभिन्न चेहरों के एक समूह हैं जो एक ही विश्वास में पिरोए गए हैं। संत पापा ने कहा,
2: il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
1: धर्म विधि की रीति हमें बेहतर रूप में परिभाषित अभिव्यक्तियों और प्रार्थना की कड़ी में जोड़ती है जो कभी कभी हमें व्यक्तिगत रूप में सहज लगने के बदले अटपटा लगता है। इसका तर्क यद्यपि कार्य की कठोर रूपरेखा में स्वतंत्रता का अवरोध करना नहीं है, इसके विपरीत इसके भव्य सुर की सरलता में धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए कठोर क्रियाकलापों को परिभाषित करते और हमें उन बातों की ओर अग्रसर करते हैं जो जरूरी है। इस भांति हम कार्य के एक दूसरे आयाम की खोज करते हैं जो उत्पादक के हिसाब तथा समय और स्थल के अनुभव से नहीं चलता है। धार्मिक अनुष्ठान में हम मुफ्त में मिलने वाले तर्क का अनुभव करते हैं। हम एक ठहराव को पाते जो हमारे हृदयों का निर्माण फिर से करता है। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हम दिव्य कृपा से पोषित किए जाते हैं। हम एक ताल में जीना सीखते हैं जिसमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान का व्याकरण हमारे लिए चिन्हों और प्रतीकों के ताने बाने से बुना गया है, जो धर्म विधि का भाग है। इसमें जैसे कि धर्म सभा हमें कहती है, व्यक्ति का पवित्रीकरण इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले संकेतों के अनुरूप होता है और इन संकेतों का प्रभाव को हम मेल खाने वाले चिन्हों में पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इन चिन्हों के महत्व के बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि उनका अर्थ सृष्टि में उनकी रचना और मानव की संस्कृति पर आधारित है, जो विशेषकर प्राचीन विधान की घटनाओं से परिभाषित है और जो पूर्ण रूपेण यीशु ख्रीस्त और उनके कार्यों में प्रकट होता है। पानी की निशानी सृष्टि के शुरू से लेकर जल प्रलय तक, लाल समुद्र से पार होकर यर्दन तक और फिर यीशु ख्रीस्त की बगल से प्रवाहित होने वाले जल तक, जो हमारे लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में संस्कारीय रूप में डूबे जाने की निशानी है। चिन्ह और प्रतीक हमारे लिए दो शब्द हैं जिनका उपयोग सदैव एक दूसरे के लिए होता है। वास्तव में एक चिन्ह हमारे लिए प्रतीक है जब वह अपने में न केवल एक विचार बल्कि संपूर्ण प्रणाली के अर्थ और मूल्यों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। इस भांति उदाहरण के लिए, जब हम सबों पर पवित्र जल छिड़का जाता है तो यह हमारे बपतिस्मा में प्राप्त उपहार और यीशु ख्रीस्त में हमारे समर्पित जीवन की सचेतना को जागृत करता है। दूसरे निशानियों को हम मुख्यतः व्यवहारिक रूप से प्राकृतिक पाते हैं, जो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम होते हैं। कुछ साधारण और सामान्य निशानी जैसे कि घुटनी टेकना और शांति अभिवादन देना या अधिक मांग करने वाले जैसे हर संस्कार के कार्यों को हम पाते हैं। इन सारी चीजों से बढ़कर निशानियों को हम एक अद्वितीय प्रदर्शनकारी और परिवर्तनकारी आयाम स्वरूप पाते हैं, जिनका संबंध भौतिक चीजों से है, जिनके द्वारा वे बने हैं और जिनका उनके संग संपर्क होता है या जुड़े होने के भाव उत्पन्न करते हैं। यह उनके मन और दिल का स्पर्श करता और उन्हें कलीसिया के सच्चे संबंधों की ओर उन्मुख करता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica.
1: प्रेरितिक प्रबोधन Desiderio Desideravi में संत पापा फ्रांसिस रोमानो गुआर्दिनी की बातों को उद्धृत करते हैं। धर्म विधि का प्रथम प्रशिक्षण कार्य, मानव को चाहिए कि वह पुनः एक बार प्रतीकों के योग्य बने। हमें अपने को धर्म विधि के अनुष्ठानों से शिक्षित करने की जरूरत है। हमें कोमलता में अपने समारोहों की सुंदरता की देख रेख करने की जरूरत है, बिना मनमानी के। हमें एक वास्तविक रहस्यवाद हेतु समर्पित होने की आवश्यकता है। एक सजीव और धार्मिक धर्म विधि जिसका अनुष्ठान सही रहस्यमय धर्म शिक्षा के माध्यम होता है, यह हर एक में ईश्वर से मिलन हेतु एक सुंदर स्रोत बनता है, जिसे हम देह धारण के तर्क में पाते हैं। यह सिर्फ तब हो सकता है जब व्यक्ति अपने को हृदय, आत्मा और शरीर से शामिल करता है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार सुबह वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार के छोटे कमरे में अमेरिका के कैथोलिक कॉलेजों और विश्वविद्यालय के संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जो 2026 रोम सेमिनार के लिए रोम आए हुए हैं। संत पापा ने कहा, जब तक कैथोलिक शिक्षा छात्रों में सच्चाई के लिए सच्चा जुनून नहीं जगाती और सिर्फ दिमागी सच्चाई ही नहीं बल्कि वह सच्चाई जो खुद यीशु ख्रीस्त हैं, हम शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सच्चाई को पहचानने और उसके अनुसार अपना जीवन बदलने के लिए जरूरी कोशिश करने को तैयार होंगे। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि कैथोलिक संस्थानों को एक ऐसा जीवंत माहौल कहा जाता है जिसमें क्रिश्चिय सोच हर विषय और हर बातचीत में शामिल हो। विश्वविद्यालय के अध्यक्षों और रेक्टरों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, क्रिस्त के सच्चे शिष्य के तौर पर आपकी असलियत निश्चित रूप से आपको जीवित सुसमाचार को इस तरह से फैलाने में मदद करेगी कि जिन्हें आपको सौंपा गया है वे सच में प्रभु से मिल सकें और कैथोलिक धर्म में उस एकजुट करने वाली सोच को खोज सकें जो सिर्फ सच्चाई ही दे सकती है। संत पापा ने 25 मई को प्रकाशित हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में इंसान की सुरक्षा पर लिखे गए विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की रोशनी में आज की दुनिया में कैथोलिक शिक्षा के अहम महत्व के बारे में प्रोफेसरों से कुछ बातें की। सबसे पहले उन्होंने देखा कि शिक्षा की दुनिया अभी ज्ञान के बढ़ते बंटवारे का सामना कर रही है। हालांकि ऐसे लोगों को ढूंढना आसान है जो पढ़ाई के किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, लेकिन इनमें से कई लोग अपनी जिंदगी में दिशा ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा, इस मामले में कैथोलिक शिक्षा की खास तौर पर अहम भूमिका है। संत पापा ने प्रोफेसरों को प्रोत्साहन दिया कि जब युवा लड़के लड़कियां आपके कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोई खास डिग्री पढ़ने आते हैं तो वे अक्सर भविष्य में नौकरी की उम्मीदों से प्रेरित होकर आते हैं। प्रोफेसर ज्ञान की उस इच्छा का मार्गदर्शन करने के अपने नेक काम में लगे रहें ताकि छात्र सत्य को खोजना और उससे प्यार करना, जीवन के मतलब पर सोचना और हर इंसान की गरिमा को पहचानना सीख सकें। और संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर याद दिलाया कि इस सप्ताह गुरुवार को कलीसिया मसीह के पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार कॉर्पस क्रिस्ती मना रही है। संत पापा ने विश्वासियों को इस परंपरा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, कई शहरों और देशों की सड़कों पर पवित्र संस्कार के साथ होने वाले जुलूसों को लोकप्रिय यूखरिस्ट भक्ति की झलक मिलती है। इस बारे में मैं आपको विश्वास के लिए सार्वजनिक गवाही के इस खूबसूरत प्रदर्शन को जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यूखरिस्ट में हम यीशु के बारे में सोचते हैं जो हम में से हर एक के लिए तोड़ी और दी गई रोटी है। विश्वासियों को अपने अभिवादन में संत पापा ने मध्य पूर्व में सेवा कर रहे पुरोहितों और धर्म संघियों के प्रति अपनी खास करीबी शब्द कहे। मैं अपनी प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आपकी सेवा के कार्यों और आपके अपने देशों की उम्मीदों के साथ हूँ। संत पापा ने यीशु के पवित्र हृदय की पुत्रियों, मोंटफोर्ट परिवार के सदस्यों और सेनाकल की माता मरियम की धर्म बहनों को भी बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उन सभी के लिए उम्मीद की निशानी बने जो ईश्वर और उनकी सच्चाई और उनकी शांति के प्यासे हैं। और संत पापा लियो 14वें ने दुनिया भर के कैथोलिकों से इस जून महीने में खेल के महत्व के लिए प्रार्थना करने में उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने मंगलवार को महीने का संत पापा के साथ प्रार्थना करे वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने खेल की दुनिया में बड़े फायदों के साथ साथ अंदरूनी चुनौतियों को भी पहचाना और प्रार्थना की कि खेल कार्यक्रम शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे। वे खेल के उपहार के लिए
उन लोगों के लिए जो अपने शारीरिक अभ्यास द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं, खेल मैदान पर पैदा हुई दोस्ती के लिए और एक टीम के रूप में खेल की खुशी के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि संत पापा लियो याद करते हैं, प्रभु हमें सिखाते हैं कि जीवन में जैसे खेल में कोई भी अकेला नहीं बचता। संत पापा जोर देते हैं कि हमें बढ़ने, सम्मान देना सीखने, अपनी सीमाओं को पार करने और अपने जीत की खुशी साथ मिलकर मनाने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। इस तरह संत पापा लियो प्रार्थना करते हैं कि खेल हमेशा भाईचारे का स्कूल बने, खोखली दुश्मनी का नहीं, मिलने जुलने की जगह हो, अलग थलग करने का नहीं, शांति का रास्ता हो, हिंसा का नहीं। और संत पापा लियो 14वें ने 2026 में सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के लिए विषय नबी इशाया के ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्या 4, वे अपनी तलवारों को हल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे को चुना है, जिसे पारंपरिक रूप से 1 सितंबर को मनाया जाता है। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग के बयान में विभाग ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस दिन के लिए संत पापा का संदेश हथियारों की लड़ाई और पर्यावरण के नुकसान के बीच संबंध को दिखाता है। उधर यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की स्पीक फोरम की शुरुआत में रूस के शहर संत पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल समेत कई बुनियादी ढांचों पर हमला किया। मास्को ने खेरसान के एक रिहायशी इलाके पर भी मिसाइलें दागी। कल नीपर और आसपास के इलाकों में रूस के भारी हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर प्रकाश डाला। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla costituzione conciliare sacrosanctum concilium.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। अपने बुधवारीय धर्म शिक्षा में जिस भांति हम द्वितीय वैटिकन महासभा के धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर चिंतन कर रहे हैं, हम पवित्र धर्म विधि के मूल बातों जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, चिन्ह और प्रतीक पर चिंतन करेंगे। संत पापा ने कहा कि वैटिकन द्वितीय महासभा धर्म विधि के मूल्यवान तथ्यों पर कार्य करते हुए हमें इस बात की सच्चाई को पुनः खोज करने में मदद करती है जो प्राचीन कलीसिया की चेतना और धर्माचार्यों की शिक्षा में पहले से व्याप्त था। ख्रिस्तीय धर्म विधि का अनुष्ठान संस्कारीय रहस्यों का बाह्य आवरण, समारोहों का मनमाना संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि कलीसिया का मनन चिंतन है जिसके माध्यम दिव्य उपहार हमारे लिए पहुंचते हैं। इस कारण विशेष रूप से धर्म सभा हमें मिस्टेरियम फिदेई, विश्वास के रहस्य को समझने का आह्वान करती है जो हमारे लिए धर्म विधि के धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में पूरी होती है। संत पापा ने कहा, धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए धर्म विधि को आकार प्रदान करती है जिसके द्वारा वे हमारे जीवन में आध्यात्मिक संवेदना उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए यीशु ख्रीस्त के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का रसास्वादन करने में मदद करते हैं। स्वाभाविक रूप में यह हमारे लिए तब होता है यदि हम धर्म विधि के संबंध में अपरिचित या मूक दर्शक बने नहीं रहते, लेकिन उनमें पूरी तरह से शरीर, मन और हृदय से अपने को शामिल करते हैं जैसे कि हम उसे ईश्वर की आज्ञा में पाते हैं। इस भांति पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा हम ईश्वर के वचनों को सुनने, कृतज्ञता के भाव और आराधना में, भ्रातृत्व में आदान प्रदान और कलीसिया की एकता में बने रहने हेतु अपने को तैयार करते हैं। हम इस बात को पाते हैं कि हम विभिन्न चेहरों के एक समूह हैं जो एक ही विश्वास में पिरोए गए हैं। संत पापा ने कहा,
2: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
1: धर्म विधि की रीति हमें बेहतर रूप में परिभाषित अभिव्यक्तियों और प्रार्थना की कड़ी में जोड़ती है जो कभी कभी हमें व्यक्तिगत रूप में सहज लगने के बदले अटपटा लगता है। इसका तर्क यद्यपि कार्य की कठोर रूप रेखा में स्वतंत्रता का अवरोध करना नहीं है, इसके विपरीत इसके भव्य सुर की सरलता में धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए कठोर क्रियाकलापों को परिभाषित करते और हमें उन बातों की ओर अग्रसर करते हैं जो जरूरी है। इस भांति हम कार्य के एक दूसरे आयाम की खोज करते हैं जो उत्पादक के हिसाब तथा समय और स्थल के अनुभव से नहीं चलता है। धार्मिक अनुष्ठान में हम मुफ्त में मिलने वाले तर्क का अनुभव करते हैं। हम एक ठहराव को पाते जो हमारे हृदयों का निर्माण फिर से करता है। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि हम दिव्य कृपा से पोषित किए जाते हैं। हम एक ताल में जीना सीखते हैं जिसमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान का व्याकरण हमारे लिए चिन्हों और प्रतीकों के ताने बाने से बुना गया है, जो धर्म विधि का भाग है। इसमें जैसे कि धर्म सभा हमें कहती है, व्यक्ति का पवित्रीकरण इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले संकेतों के अनुरूप होता है और इन संकेतों का प्रभाव को हम मेल खाने वाले चिन्हों में पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इन चिन्हों के महत्व के बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि उनका अर्थ सृष्टि में उनकी रचना और मानव की संस्कृति पर आधारित है, जो विशेषकर प्राचीन विधान की घटनाओं से परिभाषित है और जो पूर्ण रूपेण यीशु ख्रीस्त और उनके कार्यों में प्रकट होता है। पानी की निशानी सृष्टि के शुरू से लेकर जल प्रलय तक, लाल समुद्र से पार होकर यर्दन तक और फिर यीशु ख्रीस्त की बगल से प्रवाहित होने वाले जल तक, जो हमारे लिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में संस्कारीय रूप में डूबे जाने की निशानी है। चिन्ह और प्रतीक हमारे लिए दो शब्द हैं जिनका उपयोग सदैव एक दूसरे के लिए होता है। वास्तव में एक चिन्ह हमारे लिए प्रतीक है जब वह अपने में न केवल एक विचार बल्कि संपूर्ण प्रणाली के अर्थ और मूल्यों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है। इस भांति उदाहरण के लिए, जब हम सबों पर पवित्र जल छिड़का जाता है तो यह हमारे बपतिस्मा में प्राप्त उपहार और यीशु ख्रीस्त में हमारे समर्पित जीवन की सचेतना को जागृत करता है। दूसरे निशानियों को हम मुख्यतः व्यवहारिक रूप से प्राकृतिक पाते हैं, जो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम होते हैं। कुछ साधारण और सामान्य निशानी जैसे कि घुटनी टेकना और शांति अभिवादन देना या अधिक मांग करने वाले जैसे हर संस्कार के कार्यों को हम पाते हैं। इन सारी चीजों से बढ़कर निशानियों को हम एक अद्वितीय प्रदर्शनकारी और परिवर्तनकारी आयाम स्वरूप पाते हैं, जिनका संबंध भौतिक चीजों से है, जिनके द्वारा वे बने हैं और जिनका उनके संग संपर्क होता है या जुड़े होने के भाव उत्पन्न करते हैं। यह उनके मन और दिल का स्पर्श करता और उन्हें कलीसिया के सच्चे संबंधों की ओर उन्मुख करता है। संत पापा लियो ने कहा,
2: नेला लेटरा अपोस्टोलिका डेसिडेरियो डेसिडेरावि पापा फ्रांसेस्को facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica.
1: प्रेरितिक प्रबोधन डेसिडेरियो डेसिडेरावि में संत पापा फ्रांसिस रोमानो गुआर्दिनी की बातों को उद्धृत करते हैं। धर्म विधि का प्रथम प्रशिक्षण कार्य, मानव को चाहिए कि वह पुनः एक बार प्रतीकों के योग्य बने। हमें अपने को धर्म विधि के अनुष्ठानों से शिक्षित करने की जरूरत है। हमें कोमलता में अपने समारोहों की सुंदरता की देख रेख करने की जरूरत है, बिना मनमानी के। हमें एक वास्तविक रहस्यवाद हेतु समर्पित होने की आवश्यकता है। एक सजीव और धार्मिक धर्म विधि जिसका अनुष्ठान सही रहस्यमय धर्म शिक्षा के माध्यम होता है, यह हर एक में ईश्वर से मिलन हेतु एक सुंदर स्रोत बनता है, जिसे हम देह धारण के तर्क में पाते हैं। यह सिर्फ तब हो सकता है जब व्यक्ति अपने को हृदय, आत्मा और शरीर से शामिल करता है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार सुबह वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार के छोटे कमरे में अमेरिका के कैथोलिक कॉलेजों और विश्वविद्यालय के संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जो 2026 रोम सेमिनार के लिए रोम आए हुए हैं। संत पापा ने कहा, जब तक कैथोलिक शिक्षा छात्रों में सच्चाई के लिए सच्चा जुनून नहीं जगाती और सिर्फ दिमागी सच्चाई ही नहीं बल्कि वह सच्चाई जो खुद यीशु ख्रीस्त हैं, हम शायद ही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सच्चाई को पहचानने और उसके अनुसार अपना जीवन बदलने के लिए जरूरी कोशिश करने को तैयार होंगे। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि कैथोलिक संस्थानों को एक ऐसा जीवंत माहौल कहा जाता है जिसमें क्रिश्चियन सोच हर विषय और हर बातचीत में शामिल हो। विश्वविद्यालय के अध्यक्षों और रेक्टरों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, क्रिस्त के सच्चे शिष्य के तौर पर आपकी असलियत निश्चित रूप से आपको जीवित सुसमाचार को इस तरह से फैलाने में मदद करेगी कि जिन्हें आपको सौंपा गया है वे सच में प्रभु से मिल सकें और कैथोलिक धर्म में उस एकजुट करने वाली सोच को खोज सकें जो सिर्फ सच्चाई ही दे सकती है। संत पापा ने 25 मई को प्रकाशित हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में इंसान की सुरक्षा पर लिखे गए विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की रोशनी में आज की दुनिया में कैथोलिक शिक्षा के अहम महत्व के बारे में प्रोफेसरों से कुछ बातें की। सबसे पहले उन्होंने देखा कि शिक्षा की दुनिया अभी ज्ञान के बढ़ते बंटवारे का सामना कर रही है। हालांकि ऐसे लोगों को ढूंढना आसान है जो पढ़ाई के किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ हों, लेकिन इनमें से कई लोग अपनी जिंदगी में दिशा ढूंढने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कहा, इस मामले में कैथोलिक शिक्षा की खास तौर पर अहम भूमिका है। संत पापा ने प्रोफेसरों को प्रोत्साहन दिया कि जब युवा लड़के लड़कियां आपके कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोई खास डिग्री पढ़ने आते हैं तो वे अक्सर भविष्य में नौकरी की उम्मीदों से प्रेरित होकर आते हैं। प्रोफेसर ज्ञान की उस इच्छा का मार्गदर्शन करने के अपने नेक काम में लगे रहें ताकि छात्र सत्य को खोजना और उससे प्यार करना, जीवन के मतलब पर सोचना और हर इंसान की गरिमा को पहचानना सीख सकें। और संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर याद दिलाया कि इस सप्ताह गुरुवार को कलीसिया मसीह के पवित्र शरीर और रक्त का त्यौहार कॉर्पस क्रिस्टी मना रही है। संत पापा ने विश्वासियों को इस परंपरा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, कई शहरों और देशों की सड़कों पर पवित्र संस्कार के साथ होने वाले जुलूसों को लोकप्रिय यूखरिस्त भक्ति की झलक मिलती है। इस बारे में मैं आपको विश्वास के लिए सार्वजनिक गवाही के इस खूबसूरत प्रदर्शन को जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यूखरिस्त में हम यीशु के बारे में सोचते हैं जो हम में से हर एक के लिए तोड़ी और दी गई रोटी है। विश्वासियों को अपने अभिवादन में संत पापा ने मध्य पूर्व में सेवा कर रहे पुरोहितों और धर्म संघियों के प्रति अपनी खास करीबी शब्द कहे। मैं अपनी प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आपकी सेवा के कार्यों और आपके अपने देशों की उम्मीदों के साथ हूँ। संत पापा ने येसु के पवित्र हृदय की पुत्रियों, मोंटफोर्ट परिवार के सदस्यों और सेनाकल की माता मरियम की धर्म बहनों को भी बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उन सभी के लिए उम्मीद की निशानी बने जो ईश्वर और उनकी सच्चाई और उनकी शांति के प्यासे हैं। और संत पापा लियो 14वें ने दुनिया भर के कैथोलिकों से इस जून महीने में खेल के महत्व के लिए प्रार्थना करने में उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने मंगलवार को महीने का संत पापा के साथ प्रार्थना करे वीडियो जारी किया, जिसे संत पापा के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क ने तैयार किया है। अपनी प्रार्थना में संत पापा ने खेल की दुनिया में बड़े फायदों के साथ साथ अंदरूनी चुनौतियों को भी पहचाना और प्रार्थना की कि खेल कार्यक्रम शांति और भाईचारे को बढ़ावा दे। वे खेल के उपहार के लिए
उन लोगों के लिए जो अपने शारीरिक अभ्यास द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं, खेल मैदान पर पैदा हुई दोस्ती के लिए और एक टीम के रूप में खेल की खुशी के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि संत पापा लियो याद करते हैं, प्रभु हमें सिखाते हैं कि जीवन में जैसे खेल में कोई भी अकेला नहीं बचता। संत पापा जोर देते हैं कि हमें बढ़ने, सम्मान देना सीखने, अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी जीत की खुशी साथ मिलकर मनाने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। इस तरह संत पापा लियो प्रार्थना करते हैं कि खेल हमेशा भाईचारे का स्कूल बने, खोखली दुश्मनी का नहीं, मिलने जुलने की जगह हो, अलग थलग करने का नहीं, शांति का रास्ता हो, हिंसा का नहीं। और संत पापा लियो 14वें ने 2026 में सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस के लिए विषय नबी ईशाया के ग्रंथ से अध्याय 2 पद संख्या 4, वे अपनी तलवारों को हल के फाल और अपने भालों को हसिया बना लेंगे को चुना है, जिसे पारंपरिक रूप से 1 सितंबर को मनाया जाता है। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए बने विभाग के बयान में विभाग ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस दिन के लिए संत पापा का संदेश हथियारों की लड़ाई और पर्यावरण के नुकसान के बीच संबंध को दिखाता है। उधर यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की स्पीक फोरम की शुरुआत में रूस के शहर संत पीटर्सबर्ग में तेल टर्मिनल समेत कई बुनियादी ढांचों पर हमला किया। मास्को ने खेरसान के एक रिहायशी इलाके पर भी मिसाइलें दागी। कल नीपर और आसपास के इलाकों में रूस के भारी हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
1: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में।

0: तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे।

0: तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर कृपा

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

मैं ये समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं। वे फंदे जैसी हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंस जाता है। उपदेशक कहता है कि मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन सब में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल कर दिया। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। इस अध्याय में उपदेशक प्रज्ञा और बुद्धि क्या है यह समझने का प्रयत्न करता है। कहता है कि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। दुष्टता स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है, जबकि मूर्खता विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है। इसीलिए इन दोनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। सातवें अध्याय में उपदेशक इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपने जीवन को मुश्किल में डाल देती है। और इस अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक सुलेमान कहता है कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं। वे अपने करतूतों से, अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल हैं जिसमें व्यक्ति आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। श्रोताओं, इस बात की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे सांसारिक भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई का पता लग गया था। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ था। वह कहता है कि उसे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन हजार में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। अपने निष्कर्ष में वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 16 पदों वाले इस अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। 8वें अध्याय के पहले पद में ही वह बुद्धिमान को परिभाषित करते हुए कहता है, बुद्धिमान के सदृश कौन है, सृष्टि का रहस्य कौन जानता है, प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है, समझदार व्यक्ति जैसा कौन है। यह सवाल कर सुलेमान ने एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश की जो विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। उपदेशक इस बात से भलीभांति परिचित था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी, समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी, समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए कहता है कि समझदार बने और समझदारी से बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। आगे 2 से लेकर 4 तक के पदों में उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, तुम उसके यहां उतावली में नहीं जाओ, तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है, कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं। श्रोताओं, रोमियों को प्रेषित पत्र के 13वें अध्याय में संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता और अपने पर दंडाज्ञा बुलाता है। इसी अध्याय के 3रे पद में संत पॉल कहते हैं कि शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त रहना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओं, उपदेशक इस बात को समझ गया था कि यदि सभी शासक की बात को मानेंगे तभी समाज में व्यवस्था कायम की जा सकेगी। उसका कहना है कि हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए उनका सम्मान करें क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करते हैं। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ के प्राचीन और नवीन दोनों व्यवस्थानों की दृष्टि से उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 2रा पद सही और तर्कसंगत है। उपदेशक सुलेमान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जब इंसानी कानून और ईश्वर नियमों के बीच टकराव होता है तब इससे मनुष्य का ही अहित होता है, जैसा कि प्रेरित चरित ग्रंथ के 4थे अध्याय के 19वें पद में प्रेरितवर पेत्रुस और योहन कहते हैं, आप लोग स्वयं निर्णय करें कि क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें, हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य यानी कि अन्याय दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है, अंत को नहीं अनंत को देखने की आवश्यकता है, ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें की आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा 6 से 12 जून तक स्पेन में निर्धारित है, जहां वे 2000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैड्रिड, बार्सिलोना और कैनरी द्वीपों का दौरा करेंगे। वैटिकन प्रेस के संचालक ने पत्रकारों के लिए संत पापा की चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा की रूपरेखा बतलाई। मत्तियो ब्रूनी ने संत पापा की तीर्थ यात्रा के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एक ऐसी जमीन जिसने मध्य युग के बीचों बीच अलग अलग दुनियाओं के मध्य वार्ता का प्रयोगशाला होने का काम किया। उन्होंने कहा, स्पेन में संत पापा कलिसिया और जन सामान्यों हेतु संस्थानों के साथ साथ हजारों युवाओं, परिवारों और खेल, संस्कृति और मनोरंजन की दुनिया के लोगों से मिलते हुए इस समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखेंगे। अलगाव को दूर करने के लिए एक साधन कलिसिया के स्वरूप वे राजनीति और संस्कृति के मध्य वार्ता करेंगे, साथ ही तकनीकी और मानवीय विकास पर चिंतन, नया विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटातिस पर प्रकाश डालते हुए संत पापा 23 वार्ताओं, कई भेंट करते हुए प्रवचन देंगे। वैटिकन प्रवक्ता ने कहा कि निश्चित रूप में युद्धों के इस दौर में शांति की विषय वस्तु एक मुख्य केंद्र बिंदु होगा। ऐसे समय में जब हथियारों के इस्तेमाल को तेजी से सही ठहराया जा रहा है, इससे जुड़ी विषय वस्तु निःशस्त्रीकरण एक मुख्य विषय वस्तु होगी। मत्तियो ब्रूनी ने कहा कि संत पापा की यात्रा कलिसिया की ओर से एक निशानी और प्रोत्साहन होगी। कलिसिया को विभिन्न स्तरों पर अब भी बहुत सारी चीजें करनी है। जीवन की रक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें हर एक जीवन की रक्षा करने की जरूरत है, विशेषकर उनकी जो अति संवेदनशील है। यह विषय वस्तु प्रवासन को अपने में समाहित करती है, जो संत पापा की कैनरी द्वीप की भेंट में विशेष रूप से उभर कर आएगी। एक ऐसी जगह जिसने हाल के सालों में कुख्यात अटलांटिक प्रवासन से जुड़े अनगिनत मानवीय और पारिवारिक त्रासदियों को देखा है। इन स्थानों पर संत पापा प्रवासियों की जीवन गाथा, स्वागत किए जाने के साक्ष्य और मिलन की बातों से रूबरू होंगे। एक प्रेरितिक भूमि जहां से संतों ने सुसमाचार के प्रचार हेतु पलायन किया। इस यात्रा में संत पापा यीशु ख्रिस्त की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो गाउदी के प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। संत पापा ग्रैन कैनारिया में आइगुने गुइन के बंदरगाह की भेंट करेंगे, जो शर्म का घाट कहा जाता है, क्योंकि हजारों प्रवासी, खासकर पश्चिमी अफ्रीका से आने वाले, वहां बड़ी भीड़ और खतरनाक हालत का सामना करते हैं। संत पापा के संग इस प्रेरितिक यात्रा में कार्डिनल एंजल फर्नांडिस 8वें, जो समर्पित जीवन और प्रेरितिक कार्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ समिति के अध्यक्ष हैं, महाधर्माध्यक्ष फिलिपो इयानोन, धर्माध्यक्ष सभा के अध्यक्ष और महाधर्माध्यक्ष लूस मारिन डे सैन मार्टिन, जो संत पापा के दान पुण्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ के अध्यक्ष हैं, यात्रा करेंगे। उधर CBCI भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनी पोला ने संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की प्रशंसा करते हुए उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में एक स्पष्ट नैतिक दिशा सूचक घोषित किया। कार्डिनल पोला ने संत पापा लियो के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह एक नैतिक दिशा निर्देशिका है, जिसके माध्यम प्रभावकारी ढंग से विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। कार्डिनल पोला ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि बेरोजगारी, असमानता, निगरानी और किसी एक के हाथों में शक्ति का होना भारत के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। संत पापा का नया विश्व प्रेरितिक पत्र इन मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए हम में जागरूकता उत्पन्न करता है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैग्निफिका ह्यूमैनिटास उन समस्याओं से निपटने हेतु हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे ईश्वर के रूप में सृजित मानवीय जीवन के सम्मान को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा, तकनीकी विकास को चाहिए कि वह नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे जिससे मानवीय सम्मान, न्याय और जन सामान्य की भलाई बनी रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सभी कैथोलिकों और नेक विचार वालों से आग्रह करते हैं कि वे संत पापा के इस विश्व प्रेरित पत्र का अध्ययन प्रार्थना के मनोभाव से करते हुए एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करें जिसमें तकनीकी इंसान के समग्र विकास हेतु मदद करती हो। सेनेगल का एक प्रवासी युवक संत पापा लियो से भेंट करने की प्रतीक्षा में है जिससे वह उन्हें यह आग्रह कर सके कि वे प्रवासियों की और अधिक सहायता करें जो पलायन के दौरान मर जाते हैं। यह एक सेनेगल युवक की कहानी है जो 2020 में एक जहाज के डूबने से बचाया गया था जिसमें उसने अपने भाई और कई दूसरे लोगों की मौत देखी थी। ओसेनो जो अब ग्रैंड कैनेरिया में रहते हैं प्रवासन के उपरांत संत पापा फ्रांसिस को एक पत्र में लिखा था जिसे पढ़कर वे बहुत भावुक हो गए थे। ओसेनो ने वैटिकन मीडिया से बातें करते हुए कहा, अगर मैं संत पापा से बात कर पाता तो सबसे पहले उनसे यह कहता कि वे उन प्रवासियों के लिए और अधिक मदद करें जो रास्ते में मर जाते हैं, जो लोग यहाँ आना चाहते थे लेकिन कभी नहीं आ पाए। 11 जून की सुबह ओसेनो संत पापलियो 14वें का स्वागत करेंगे, सिर्फ एक प्रवासी की भांति नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

मैं ये समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं। वे फंदे जैसी हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंस जाता है। उपदेशक कहता है कि मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन सब में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल कर दिया। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। इस अध्याय में उपदेशक प्रज्ञा और बुद्धि क्या है यह समझने का प्रयत्न करता है। कहता है कि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। दुष्टता स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है, जबकि मूर्खता विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है। इसीलिए इन दोनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। सातवें अध्याय में उपदेशक इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपने जीवन को मुश्किल में डाल देती है। और इस अध्याय के अंतिम पदों में उपदेशक सुलेमान कहता है कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं। वे अपने करतूतों से, अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल हैं जिसमें व्यक्ति आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। श्रोताओं, इस बात की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे सांसारिक भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई का पता लग गया था। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ था। वह कहता है कि उसे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन हजार में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। अपने निष्कर्ष में वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। 16 पदों वाले इस अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। 8वें अध्याय के पहले पद में ही वह बुद्धिमान को परिभाषित करते हुए कहता है, बुद्धिमान के सदृश कौन है, सृष्टि का रहस्य कौन जानता है, प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है, समझदार व्यक्ति जैसा कौन है। यह सवाल कर सुलेमान ने एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश की जो विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। उपदेशक इस बात से भलीभांति परिचित था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी, समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी, समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए कहता है कि समझदार बने और समझदारी से बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। आगे 2 से लेकर 4 तक के पदों में उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, तुम उसके यहां उतावली में नहीं जाओ, तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है, कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं। श्रोताओं, रोमियो को प्रेषित पत्र के 13वें अध्याय में संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता और अपने पर दंडाज्ञा बुलाता है। इसी अध्याय के 3रे पद में संत पॉल कहते हैं कि शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त रहना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओ, उपदेशक इस बात को समझ गया था कि यदि सभी शासक की बात को मानेंगे तभी समाज में व्यवस्था कायम की जा सकेगी। उसका कहना है कि हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए उनका सम्मान करें क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करते हैं। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ के प्राचीन और नवीन दोनों व्यवस्थानों की दृष्टि से उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 2रा पद सही और तर्कसंगत है। उपदेशक सुलेमान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जब इंसानी कानून और ईश नियमों के बीच टकराव होता है तब इससे मनुष्य का ही अहित होता है, जैसा कि प्रेरित चरित ग्रंथ के 4थे अध्याय के 19वें पद में प्रेरितवर पेत्रुस और योहन कहते हैं, आप लोग स्वयं निर्णय करें कि क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें, हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य यानी कि अन्याय दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है, अंत को नहीं अनंत को देखने की आवश्यकता है, ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापालियो 14वें की आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरित यात्रा 6 से 12 जून तक स्पेन में निर्धारित है, जहां वे 2000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मैड्रिड, बार्सिलोना और कैनरी द्वीपों का दौरा करेंगे। वैटिकन प्रेस के संचालक ने पत्रकारों के लिए संत पापा की चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा की रूपरेखा बतलाई। मत्तियो ब्रूनी ने संत पापा की तीर्थ यात्रा के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, कहने की जरूरत नहीं है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एक ऐसी जमीन जिसने मध्य युग के बीचों बीच अलग अलग दुनियाओं के मध्य वार्ता का प्रयोगशाला होने का काम किया। उन्होंने कहा, स्पेन में संत पापा कलिसिया और जन सामान्यों हेतु संस्थानों के साथ साथ हजारों युवाओं, परिवारों और खेल, संस्कृति और मनोरंजन की दुनिया के लोगों से मिलते हुए इस समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखेंगे। अलगाव को दूर करने के लिए एक साधन कलिसिया के स्वरूप वे राजनीति और संस्कृति के मध्य वार्ता करेंगे, साथ ही तकनीकी और मानवीय विकास पर चिंतन, नया विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटातिस पर प्रकाश डालते हुए संत पापा 23 वार्ताओं, कई भेंट करते हुए प्रवचन देंगे। वैटिकन प्रवक्ता ने कहा कि निश्चित रूप में युद्धों के इस दौर में शांति की विषय वस्तु एक मुख्य केंद्र बिंदु होगा। ऐसे समय में जब हथियारों के इस्तेमाल को तेजी से सही ठहराया जा रहा है, इससे जुड़ी विषय वस्तु निःशस्त्रीकरण एक मुख्य विषय वस्तु होगी। मत्तियो ब्रूनी ने कहा कि संत पापा की यात्रा कलिसिया की ओर से एक निशानी और प्रोत्साहन होगी। कलिसिया को विभिन्न स्तरों पर अब भी बहुत सारी चीजें करनी है। जीवन की रक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें हर एक जीवन की रक्षा करने की जरूरत है, विशेषकर उनकी जो अति संवेदनशील है। यह विषय वस्तु प्रवासन को अपने में समाहित करती है, जो संत पापा की कैनरी द्वीप की भेंट में विशेष रूप से उभर कर आएगी। एक ऐसी जगह जिसने हाल के सालों में कुख्यात अटलांटिक प्रवासन से जुड़े अनगिनत मानवीय और पारिवारिक त्रासदियों को देखा है। इन स्थानों पर संत पापा प्रवासियों की जीवन गाथा, स्वागत किए जाने के साक्ष्य और मिलन की बातों से रूबरू होंगे। एक प्रेरितिक भूमि जहां से संतों ने सुसमाचार के प्रचार हेतु पलायन किया। इस यात्रा में संत पापा यीशु ख्रिस्त की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो गाउदी के प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। संत पापा ग्रैन कैनारिया में आइगुने गुइन के बंदरगाह की भेंट करेंगे, जो शर्म का घाट कहा जाता है, क्योंकि हजारों प्रवासी, खासकर पश्चिमी अफ्रीका से आने वाले, वहां बड़ी भीड़ और खतरनाक हालत का सामना करते हैं। संत पापा के संग इस प्रेरितिक यात्रा में कार्डिनल एंजल फर्नांडिस 8वें, जो समर्पित जीवन और प्रेरितिक कार्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ समिति के अध्यक्ष हैं, महाधर्माध्यक्ष फिलिपो इयानोन, धर्माध्यक्षीय सभा के अध्यक्ष और महाधर्माध्यक्ष लूस मारिन डे सैन मार्टिन, जो संत पापा के दान पुण्य हेतु स्थापित परम धर्म पीठ के अध्यक्ष हैं, यात्रा करेंगे। उधर CBCI भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल अंतोनी पोला ने संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की प्रशंसा करते हुए उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में एक स्पष्ट नैतिक दिशा सूचक घोषित किया। कार्डिनल पोला ने संत पापा लियो के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास का स्वागत करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह एक नैतिक दिशा निर्देशिका है, जिसके माध्यम प्रभावकारी ढंग से विकसित हो रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। कार्डिनल पोला ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि बेरोजगारी, असमानता, निगरानी और किसी एक के हाथों में शक्ति का होना भारत के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। संत पापा का नया विश्व प्रेरितिक पत्र इन मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए हम में जागरूकता उत्पन्न करता है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा, मैग्निफिका ह्यूमैनिटास उन समस्याओं से निपटने हेतु हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे ईश्वर के रूप में सृजित मानवीय जीवन के सम्मान को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा, तकनीकी विकास को चाहिए कि वह नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे जिससे मानवीय सम्मान, न्याय और जन सामान्य की भलाई बनी रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सभी कैथोलिकों और नेक विचार वालों से आग्रह करते हैं कि वे संत पापा के इस विश्व प्रेरित पत्र का अध्ययन प्रार्थना के मनोभाव से करते हुए एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करें जिसमें तकनीकी इंसान के समग्र विकास हेतु मदद करती हो। सेनेगल का एक प्रवासी युवक संत पापा लियो से भेंट करने की प्रतीक्षा में है जिससे वह उन्हें यह आग्रह कर सके कि वे प्रवासियों की और अधिक सहायता करें जो पलायन के दौरान मर जाते हैं। यह एक सेनेगल युवक की कहानी है जो 2020 में एक जहाज के डूबने से बचाया गया था जिसमें उसने अपने भाई और कई दूसरे लोगों की मौत देखी थी। ओसेनो जो अब ग्रैंड कैनेरिया में रहते हैं प्रवासन के उपरांत संत पापा फ्रांसिस को